नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप येष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिम्।